0: एक नहीं आस की दूजे लगे जाए, नानक असत कांडिये सद ही रह समाए, चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए, आस के हुना खिए जे लिखे वरते सोई महला दूजा।
1: सलाम जवाब दोवे करे मुडो कुथा जाए, नानक दोवे कुड़िया थाए ना कहाई, पाए पौड़ जित सेवी है सुख।

थोड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले कसमे पाए, गुरमत सुनो अगली हो वजो पेधु ना खाए, कसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए, वजो गवाए अगला मोह मोह पाना खाए, जिस दिता खावना तिस कहिए सवास, नानक हुक्म ना चले।

पावड़ी नानक अंतना जापन हर ताके पारावार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार एक ना गलिन जजीरिया कुतुरी चढ़े बुसार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिनके

0: आपे भांडे साजना पे पूर्ण दे इकनी दुध समाई चुलेरा चढ़े इकने हाली पैसा मन कुपरन खड़े ते ना सवारे नानका जिन को नदर करे महला दूजा
1: आपे सजे करे आप जाई पे रखे आप जंत पै के देखे था पे था किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका सब किछ।

एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहण गणिजै तिर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण त्रिण कहत तो सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत अब राखो हो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख शफारी कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बहुसाज सोदामा आपदा ते राखे गान का पढ़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए राखो दास पाठ की लाज ज्यों जानो हो त्यों राख हर प्रभ तेरे केते गनो असंख अवगण मेरिया असंख अवगण खति फेरे नित प्रत सद भूलिए मोह मगन बिकराल माया तो प्रसादी भूलिए लोक करत बिकार बिखड़े प्रभ नेर हूँ ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड भव जल फिरिया असी खते बहुत कमाव दे अंत न पारावार हर किरपा करके बख्श लैहु हों पापी बड़ गुन है गार दर्शन प्यासी दिन सरात चित बहु अन दिन नीत

सुख टल गुर सेवियन एहनस सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सच्चा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है सवना दा विसाह सजन

रहाओ साचा साहिब सच तू मेरे साह तेरा किया सच सब होए झूठा किस को आखिया साह दूजा नहीं कोए सबना विच तू वरतदा साह सब तुझ है त्यावह दिन रात सब तुझ ही था वह मांग दे मेरे साह तू सबना कर है एक दात सब को तुझ ही विच है मेरे साह तुझ ते बाहर कोई नाहे सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साह सब तुझ ही माहे समाहे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझ है त्याव है मेरे साह ज्यों भावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझ है त्याव है मेरे साह ज्यों भावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तनासरी महला चौथा मेरे साह मैं हर दर्शन सुख होए हमरी बेदन तू जानता साह अवर क्या जाने को

0: अमृत बा रंग प्रंग अनेक न जापन करत बा जिया अंदर जियो सब की जान ला सब की तेरे बस तेरा कर भला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान मत्ता ते जपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिस जत कथा नानक दसन दास तुद आगे बिन वता श्लोक
1: पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुए धाई दाए खिले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया बच धर्म दूर करमी आपू अपनी।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दो ता गावहु हरि केरा मन जिने वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा। कर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया एह वडियाइया। कहे नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सभागै। कर सभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कहे नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी।

जाबते दर्शन पेटे साधु भले दिन सोए आए। महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए। आब मोहे राम जसो मन गायो पयो प्रगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो रहाओ। गुण निदान रिद पीतर वसिया ता दुख परम पाओ भागा पई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा। चिंत अचिंता सोच असोचा सोग लोभ मोह थाका हौ मैं रोग मिटे किरपाते जामते भए बेबाका। गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पाणी कहो नानक जिन जम ते काडे तिस गुर कै कुरबाणी। गुर की टहल गुरु की सेवा गुर के आज्ञा पाणी कहो नानक जिन जम ते काडे तिस गुर कै कुरबाणी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

दिवस रात दुए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए।

हम अब गुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाय, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर यार सह कुर सह चटिया, तुद डिठी सच्ची पात साह, माल जन्म जन्म दी कट्टी है, सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहा दै साहु, जिस पास बैठे आसो ही है, सब ना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहा दै साहु, जिस पास बैठे आसो ही है, सब ना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला पंजवा, जब ते दर्शन भेटे साधु, भले दिनस ओय आए, महा आनंद सदा कर कीर्तन, पुरख विधाता पाए। जब ते दर्शन भेटे साधु, भले दिनस ओए आए, महा आनंद सदा कर कीर्तन, पुरख विधाता पाए। आब मोहे राम जसो मन गायो, पयो प्रगास सदा सुख मन मह, सत गुर पूरा पायो, रहाओ

0: आयो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो।

पर अकाल मूर्त जूनी सह भंगुर प्रसाद असमहला पहला वार श्लोका नाल श्लोक महले पहले के।

एहन ससहज सुभाय दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सच्चा पातशाह सिर सहन जिस पास बैठिया सोही है सवना दा वेसा सजन सच्चा पा